एक किस्सा तरती तेन से पानी मनिया गया। समुंदर बड़ा वट है। एक वरी देवतिया ने विचार की थी, देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है, इस विच की चीज है, केड़ी केड़ी वस्तु है। पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी। सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए, जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी, पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे। ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है, रस्से दी लोड़ है, समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिदी, रस्सा चाहिदा। पर समुंदर अथाह है, एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी। तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया, शेष नाग नू रस्सा बनाया। शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया। एक पासिओं उस सप नू देवतिया ने फड़िया, एक पासिओं दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने, दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले। एक वरी सप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया, एक वरी दैंता ने सप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया। ते ओ जड़ा पर्वत सी उस समुंदर दे विच इस तरह घूमन लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घूमदी। देवते उस शेष नाग नू अपने वाल खिचदे ने, दैंत अपने वाल खिचदे ने, ते पर्वत जिहड़ा है उस समुंदर दे विच घूम रहा है। बड़ियां भयानक लहरां उठियां, जदों लहरां उठियां ते सारियां तों पहलां जहर निकलिया। जहर बड़ा खतरनाक सी, धरती ते सुटदे ने तां नुकसान बड़ा हुंदा। ओ जहर शिवजी भगवान नूं पीण वास्ते बेनती कीती गई। ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता। उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया, उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया। इस करके शिवजी भगवान नूं लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करते। जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां, जिन्हां विच काम तीन गऊ, पारजात दरखत, लक्ष्मी। अनेकां वस्तुआं निकलियां, लक्ष्मी नूं विष्णु भगवान जी ने अपना लिया। पारजात दरखत नूं इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया। जिथे अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया, पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लाया।

द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार कर दें, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए ता आनंद और समझ पूरी आंदी। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया, सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया, रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता है, देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी ओ कहन लगे मेरा वीर डुबिया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब झुब्बी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड, अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे नाम दी कीमत

कीर्तन करने वाला तन गुरु नानक साहब कहंदे ने हौ ढाडी विकार मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां उदा कीर्तन करने वाला पर मैं वेला सी कारे कहंदे ने काम उस पर

बाद गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन साहब, गुरु हर गोविंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हर कृष्ण साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी, अते दसवें गुरु धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरगद्दी ते बैठे। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, आनंदपुर साहब छड़िया एक गुफा विच धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 11 महीने 11 दिन बैठे रहे। 11 महीने अते 11 दिन जदू हुए, 11वें दिन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख नूं इक गल याद

उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखिआ है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी आनंदपुर साहिब। संगत बैठी।

जदों दोबारा गया मैनू एक सिर दी लोड़ है। हर पासे सहम छा गया ते ए की हो गया, गुरु साहब जी अपने सिखां दे सिर मंगण लग पए। तीसरी वारी सिर मंगया तां भाई दया राम उठे, हाथ जोड़ के कहन लगे, महाराज मेरा सिर हाजर है। दया राम नू बाहों फड़िया, तंबू च लै गए, कृपान मारी, सिर वड़िया। लहू नाल भरी हुई कृपान लैके जदों साहब जी वापस आए, लहू भरी कृपान देख के जिहड़े बैठे सन ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਬ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਣ।

अद्धे तो ज्यादा पंडाल खाली हो चुका सी। ते जड़े दूर दूर भज गए सन, भजे भी जा रहे ने ते पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने, कोई फड़न ते नहीं आ रहे। पर पंजवी तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए। जड़े बैठे सन प्यारो भी करते, पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते। बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पे ने। हुण गुरु साहब जी उस तंबू विचों बाहर निकले, कृपान म्यान विच है, चेहरे ते हुण रौनक प्यार है। वो पंजो जिन्हां दे सिर वड्डे सन ओह ते जिउंदे ने, इक वर्गे कपड़े पाए ने, गात्रे कृपान, सोहणियां दस्तारा, हाथां विच कड़े, तेड़ कशहरे, हाथ जुड़े ने। पंजो जने पिछे पिछे में आ रहे ने, जिवें अगे चंद ते पिछे सितारे तुरे आंदे। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह अपने सिंघासन ते बैठ गए। सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए।

घर घर ए हो पहुंचा सदरे नित पवन ए सदा ता नित ही पै रही हन असी सुनिया अनसुनिया कर देंदे हां जदों कोई मनुख इस संसार तो जा रहा होंदा है कोई अर्थी जा रही होंदी है ओ सानू चेता करा रहा होंदा है ऐ मनुख एक दिन तेरे ते भी ऐसा आएगा वो भी सदरे दे रहे दस रहे जदों मनुख सौं जांदा है ना रात नू ए मौत विखाली दे जांदी है हजूर ने इस मौत नू नित परलों किया कि हर मनुख ते नित परलों आउंदी है वो केड़ी आउंदी है जदों असी सौं जांदे हां तां मौत विखाली दे जांदी है दस जांदी है ऐ मनुख एक दिन सोमन होएगो लांबे गोड पसार एक दिन तू ऐसा समेगा कि कोई तैनू उठाल ना सकेगा ऐसे लई सतपुरुष कहंदे हन जदों सौ के उठिए तां इशनान करो भाई शरीर दी पवित्रता लई क्योंकि मौत भी खाली दे जांदी है ओ भी मौत जो नित परले है ए नींद है ते जदों श्वासां दी गंढ खुल जांदी है इस नूं नमित परलों के है कि जदों श्वास समाप्त हो जान तां मनुख अगला कदम नहीं पुट सकदा उत्थे ही मिट्टी दी ढेरी हो जांदा है उच्चारण करो श्री घर घर ए हो पहुंचा सदड़े नित पवन घर घर ए पहुंच है सदड़े पै रहे हन जिवें बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले क्या करदे सन भाई ए सदड़े गुरमुखां नूं अमृत वेले भी पैंदे हन उठ भाई गुरु के लाल ए मनुच्छा जन्म भी तेरा अमृत वेला है ते अमृत वेले उठ के इशनान कर सचखंड दे द्वार खुल गए हन गुरु जागदा होवे तू सुता होवे तां फिर प्रसन्नता नहीं भाई जे गुरु दी खुशी माननी है तां अमृत वेले उठ इशनान कर ते फिर सत संगत विच बह के जप श्री वाहे गुरु ताकि तेरा जीवन सफल हो जाए तेरा जमना मरना मिट जाए इसलिए घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिबरी ए सदा की कह रही हन ए सदा कह रही हन भाई सदनहारा सिबरी जिस वाहेगुरु ने तैनू भेजिया ना उसने सदना भी है मनुख एवें नहीं संसार विच आ गया अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर का कल्या होया है हजूर दी बाणी कह रही है जिहा चीरी लिखिया तेहे हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए ते जेड़ा कल्या होया आउंदा है जेड़ा किसी का भेजिया होया आउंदा है वो कोई जिम्मेवारी लैके आउंदा है कोई ड्यूटी लैके आउंदा है कोई काम करन लई आउंदा है ते अकाल पुरख वाहेगुरु ने भाई सानू संसार विच भेजा है भाई तू जाके सिमर सिमर नाम बारंग बार बारंग बार उस प्रभु दा सिमरन कर इसलिए तेनू सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया ए एवें नहीं मिल गया ए बड़ा अमोलक जन्म है भाई लख चौरासी परम दिया दुर्लभ जन्म पायो एक दस बंदियां दी क्यों भुगतानी होवे कितना समा लग जांदा है ते जिदी वारी चौरासी लख दे बाद आई होवे एक एक जून दी उम्र गिनीए तां कई जूना विच ऐसियां भी हन जिन्हां दी हजार हजार बरस उम्र है लख लख बरस उम्र है जिवें पहाड़ां दी ब्रिशां दी कई कई हजार बरस ते हजूर कहिंदे ने भाई कितने युगां दे बाद तेनू ए मनुच्छा जन्म मिलिया होवेगा अंदाजा ला लै कि लख चौरासी
84 ਲੱਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਵਾ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮੂੜੇ, ਓਏ ਮੂਰਖ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਤੁਦ ਵਿਸਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸੀ ਮੂੜੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਮ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਵੇਂਗਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਇੱਥੇ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਚਾ ਪਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਘੜਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਨਕ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾਂ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਤ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

एक बारी सारे बोलिए धन गुरु तेग बहादुर साहब। कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के आख देन।

शरीर दे नाल चोज कर दे जो मृतक मिथ्या शिंगा ओ तेरे इस तरह हन बिना सिमरन दे जिस तरह कोई मुर्दे दे ऊपर चंगे कपड़े पा देवे माड़े पा देवे उनू कोई फर्क नहीं पैंदा इसलिए बिना सिमरन दे जो मृतक मिथ्या सिंगार इसलिए मिल मेरे गोबे क्योंकि तेरे सिमरन तो बिना मनुख मनुख नहीं है।

तेरे जितने रस भोग तू सुखा वल भजदे चाहने के मैनू सुख दी नींदर आ जावे किवें आ सकती है नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने ने आख्या जेड़ा बंदा जेड़ा मनुख अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा उनू सुपने विच भी सुख दी नींदर नहीं पै सकदी सुपने विच भी सुख प्राप्त नहीं हो सकदा इसलिए

सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त करके वाहिगुरु ने तेरे लिए किते प्रबंध किते माता के उदर में प्रतपाल करे माता दे उदर विच भी तेरी प्रतपालना कीती जदों तेरा जन्म होया तावी तेरे सारे प्रबंध कीते कदी अकाल पुरख दे उपकारा नूं ही चेते करके तू जप लैंदा आख्या जे नहीं जपिया तां चोर की न्याई जमपुर वादा क्योंकि अमोलक स्वास प्राप्त करके जिन्हां ने जपिया नहीं फिर जमपुर बदे मारी है आख्या तिन्ना मुख डरावणे जिन्हां विसारियो नाऊं एथे दुख घनेरियां अगे ठोर ना थाऊं पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय नानक जो मथन माधानिया त्यों मथे धर्म रहे एडी सजादा भागी होवेगा जे तू अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा इसलिए हर का नाम जिन मन ना आराधा।

नाम ना जपन वालियां ने कितनी ताड़ना कीती, कितनियां त्रिग कारां पाईयां, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग कुटुंब शरीर सहत आख्या ए त्रिगकार उसनूं ही नहीं उदे कुटुंब नूं ही है जिहड़ा परमेश्वर दा सिमरन नहीं करदा। ते फिर जिवें बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले फरमाया करदे सन, भाई जदों असी परमेश्वर दा नाम भुल जांदे हां तां साडियां आवाजां दुखां दे कन्नां ते जा पैंदियां हन, सानूं दुख आके घेरदे हन। फिर बंदा विलपदा है, कुरलाउंदा, कहिंदा पता नहीं रब ने की कहर ढा दित्ता, भाई तू उहदे उपकारां नूं चेते रखदा तां इह दुख तैनूं कदे ना वापरदे। आप क्या करदे सन महापुरख के जदों असी अकाल पुरख वाहिगुरु दा सिमरन करदे हां, उहदा शुकराना करदे हां, तां साडियां आवाजां सुखां दे कन्नां ते जा पैंदियां हन। जेड़े सुख चित चेते भी नहीं ना होंदे ओ भी मिल जांदे हन। ओ किहदी कृपा, भाई तू शुकराना कर, तू मालक दा कम कर, मालक तेरे सवारी जाएगा। ते जे तू अमोलक स्वास प्राप्त करके नहीं जपदा ता फिर हजूर बख्शिश करदे हन कोट बिघन ते लागते, उन्हां नूं करोड़ां बिघन लग जांदे हन। जिन हर हिरदे नाम न वस्यो तिन मात कीजे हर बाजा, तिन सुन्नी देह फिरे बिन नामे ओए खप खप मुवे करांजा। ओ खप खप के मर जांदे हन जिन्हां नूं वही परमेश्वर दा शुकराना याद नहीं। एदे अमोलक स्वास महापुरख वचन सुनाया करदे सन बाबा जी, कहण लगे एक बिरद शरीर त्यागन लगा ते उहदा सारा परिवार इकट्ठा होके बेनती करन लगा, बाबा कुछ जांदियां जांदियां सानू सुमति दे जा, मत दे जा। ता ए बिरद बाबा कहण लगा, भाई मैं अपने जीवन विच तुहानू करोड़ां ही कमा के दिते हन ते हुण मेरे श्वास समाप्त हन, कुछ रुपए खर्च करके जे श्वास लै आवो तां मैं तुहानू कोई सुमति दे दिंदा। आख्या बाबा ए तां किसे भी कीमत तो नहीं मिल सकदे। और सच है प्यारी सत संगत, जे सारे जीवन दी पूंजी भी एक पलड़े ते रख दईए ते दूजे पासे एक श्वास दी भी कीमत नहीं असी दे सकदे, ते जिस वाहिगुरु ने सानू अनगिनत अमोलक श्वास दिते हन क्यों ना उदा सिमरन करिए, क्यों ना उदे चरणा विचों सिमरन दी दात मंगिए, जिवें गुरु अर्जन देव पातशाह मंग रहे हन, मिल मेरे गोविंद।

0: गुरु पाछा ने इस पावन पवित्र शब्द अंदर गुरु दी पूजा दसी है। गुरु दी पूजा किवें करनी है, इसे तरह का ख्याल भगत कबीर जी देंदे हुए सानू एक गल समझांदे ने। कहिंदे ने हे मनुख हे इंसान, पूजा किवें करनी है। किसे ने कह दिता तीर्थ स्नान इयो पूजा है। हुण भगत जी इस गल नूं स्पष्ट करदे हुए उपदेश साडे तक पहुंचांदे हुए कहिंदे ने,
1: अंतर मैल जे तीर्थ नावै,
0: अंदर तेरे मैल भरी हुई है, अंदर तेरे गुनाह कठे कीते हुए ने, अंदर तेरे अवगण ही अवगण हन। भगत जी कहते ने जे तू तीर्थ स्नान करन भी चला जाए तू तीर्थ नूं भी गंदा करके रख देवेगा, क्योंकि तेरे अंदर इतना गंद है, तेरे अंदर इतनी मैल है। भगत जी कहते ने वाकई लोगों ने अपनी मैल धो के तीर्थ नूं भी गंदिया कर दिता है, मैला कर दिता है। पर इत्थे हुण भगत जी कहते ने तीर्थ केड़ा है ते गुरु की पूजा की है। अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, वह बैकुंठ नूं नहीं जा सकता, ओनूं कदी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता जे तीर्थ स्नान करन गया भी अपने अंदर दी उहने मैल नूं नहीं त्याग गया, अवगणां नूं नहीं त्याग गया, गुनाहां नहीं त्यागे। कहिंदे ने कोई फायदा नहीं तीर्थ यात्रा जाण दा भी।

सारा दिन न रहन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा कह कबीर नर्त से त्यावो बावरे आ संसार। हे नर उस मालिक नु त्या, उस मालिक दी पूजा कर, तू ते संसार दी तरह एवी बौरा होया है, पागल शुदाई मेंटल होया होया है, इसलिए आ उस मालिक नु त्या जिस ते त्याउण दे नाल तेरी पूजा सफली हो सकती है। किदे नाल तू पूजा करनी चाहना है? इस मन नाल? साहिब कहिंदे ने भी तेरा नहीं। इस तन नाल? ए भी तेरा नहीं है। इस तन नाल? ए भी तेरा नहीं है। आज इंसान नु मनुख नु हंकार ही ऐसे गल दा है, कहना तन मेरा, मन मेरा, तन मेरा, हे परमात्मा तेरा की है? ध्यान देना मेरी गल वल, हे परमात्मा तेरा की है? पर इत्थे साहिब कहिंदे ने हे मनुख, हे इंसान, सब कुछ ते है ही परमात्मा दा है, तू किहदे नाल पूजा कर रहे हैं? तेरी पूजा किवें हो सकती है? क्योंकि सब कुछ ते दित्ता परमात्मा दा है। हुण ख्याल करना, जे मनुख नूं तनना मिलदा ते मनना हुंदा, जे तन ते मनना हुंदा तन कदी भी ना हुंदा। परमात्मा ने तन दित्ता ते असीं तन कमाया है, जे परमात्मा तन ही ना देंदा तन कित्थों हुंदा? इसलिए साहिबा ने बाणी विच एक गल कह दित्ती सी, तन मन तन सब सौंप गुरु। भाई ये गुरु नूं दे दे, जदों ये गुरु नूं दे देवेंगा फिर हुक्म मन्नीए पाईए। जदों गुरु दे हुक्म नूं मन्नेगा फिर तू परमात्मा नूं पा सकना, फिर उहदी पूजा कर सकना, इस तों बिना पूजा नहीं हो सकती। इसलिए ख्याल बड़ा सुंदर है।

बिन गुर बचन जो मनना, जो गुरु दे बचन तो बिना चलता है। असी कहने ते हां कि हे गुरु साहब जो तुसी कहो ओ सी करन नु तैयार हां, पर खिमा करना सी कर दे कोई नहीं। असी ओही कुछ करदे हां जो साडा मन मनदा है, जो साडी मत कहिंदी है। जिवें असी चलना चाहने हां, अगर गुरु दे हुक्म नाल चलीए ते खिमा करना अज दुख तकलीफ कदी भी ना होवे। ये दुख तकलीफ क्यों है? क्योंकि असी गुरु का हुक्म नहीं मनते, गुरु का बचन नहीं मनते। बिन गुर बचन जो मनना ऊरा परथाओ, कहते तुझ जी एक वसीला है। जे मनुख तू कर सके ते जिना मनुख कर लवे ओदे हुक्म रजा विच आ जाए, फिर कहते ओदी पूजा परवान हो जाती है।

हर की पूजा दुर्लभ है संतो, हे संत जनो हरि दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पावे जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा है कई चीज लभिया लभ जांदी है पर कहिंदे ने दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर दे खान

हर साचे भावे सौ पूजा होवे। बस उस मालक नू पा दे फिर तेरी पूजा परवान है। पर किस तरह

तेरी पूजा प्रवान तां हो सकती है जे तू मालक दा पाणा अपने मन च वसा लै, मालक दा हुक्म अपने अंदर वसा लै। जदों मालक दा हुक्म तेरे अंदर वस गया तेरी पूजा प्रवान हो जाएगी। अगे सतगुरु उपदेश कहंदे ने, पूजा करे सब लोक संतो, पूजा करे सब लोक संतो, सारे लोग पूजा करते हैं क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि मैं पूजा करा, पर यह गल वखरी है पूजा प्रवान किसी की चढ़ती है, हर कोई नहीं चढ़ा लेंदा क्योंकि पूजा करने की एक मर्यादा है, एक नियम है, एक लॉ, एक कानून है। जब तक तू उस ला कानून दे विच नहीं आउंदा वह पूजा प्रवान नहीं हुंदी। हुण साहिब कहिंदे ने, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। मन मुख दी पूजा कदे थाए नहीं पैंदी, क्यों? मन मुख कहिंदे ने जिदा मुख गुरु वाल ने, पूजा ते कर रहा दिखावा कर रहा है, लोगों नूं समझ आ रही कि पूजा विच बैठा है, लेकिन वह कहना नहीं मैनू लोग देखण के मैं पूजा कर रहे हां। कई लोग प्रगटावा ज्यादा करते ने, इसे तरह भाई सेवा सिमरन की गल है, जिन्हें सेवा करनी है प्रगटावा ना करे, सेवा लगा रहे, सेवा लगा रहे। जो तो सेवा च लगे आपे मालक प्रवान कर लेगा, इसे तरह प्रभु की पूजा है, तो पूजा विच लगा रहो, अपना आप प्रगट ना कर, क्योंकि सिमरन करम वाला तो आपे प्रगट हो जाता है, उथे कहन की लोड़ नहीं रह जाती।

सतनाम। सतनाम श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक देव जीओ महाराज। नमस्कार गुरुदेव को।

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिवत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधार।

0: साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता बख्यान। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं आने, साध की शोभा सदा। सतगुरु जुगो जुग अटल चव तख्त मालक, नशा पास श्रीनी जगदी ज्योत। शब्द अवतार साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र गोद विच ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह जी दे पवित्र तपो भूमि तपस्थान ते आप जी जिन्ने भी माई भाई नमस्कार करन दे लई अपनी हाजियां लगवाउन दे लई सत्संग हरी जस कीर्तन दा लाभ उठाउन दे लई आए हो वडभागे हो। जो अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां गुरु चरणा विच ला के सपनियां बना रहे हो, सचमुच इन्हां घड़ियां दा कोई मुल नहीं है। सो गुरु महाराज जी दी तुरकी बाणी दे अखंड जाप चल रहे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का 400 साल प्रकाश दे संगतां मना रही हैं। साहबजादे बाबा जी सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जिया के 300 साल दिहाड़े संगतां मना रही हैं। ये कितने दिहाड़े कट्ठे हुए हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरश बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दी पवित्र याद नूं मनाउंदे होए आपां रल मिल के हाजरियां लगवाउण दे लई पवित्र धरती ते आए हां, बड़भागे हो। महापुरशां दी महिमा बाणी दसदी है, वेदां तों वी वाहरी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: वेदां तों वी वाहरी है। श्री सुखनी साहिब दे महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह प्रमाण करते हैं, साध की महिमा वेद ना जानना। वेद भी उन्हां दी महिमा नूं जान नहीं सकते। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, अगम गमता तो रहत। इतनी डूंगी है, इतनी अगाध है, जिवें समुद्र का अंत नहीं आउंदा, इसे तरह महापुरशां का भी कोई अंत नहीं आउंदा है। जो वाहेगुरु परमेश्वर बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जिस दी सृष्टि दा कोई पारा पार नहीं आउंदा है। बड़े साइंसदान लोग, विज्ञानी लोग बड़ियां खोजां कर रहे हैं, परंतु सात संगत उस दी कुदरत कायनात दा अंत नहीं किसे नूं आया। बाणी दे विच महाराज बेअंत लिखदे हन, बेअंत बेअंत, जिस दी सिफती दा भी कोई अंत नहीं है। सो जो ऐसे वाहगुरु परमेश्वर जो बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडा दा मालक है, जो रूहां जो आत्मावां उस दे नाल जुड़ गईयां, उस दे विच अभेद हो गईयां, जिवें एक बूंद पानी दी समुंदर दे विच मिल गई, उस समुंदर दा रूप हो गई। बोलो सतनाम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर दा रूप हो जांदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: जिवें बूंद पानी दे विच मिल गई, जोत जोत दे विच मिल गई, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरश साधु किसी भी सास पवित्र लफ्ज नाल उन्हां पवित्र आत्मा नूं संबोधन करिए, उन्हां दी महिमा बेअंत है, क्योंकि वह बेअंत दे विच मिल गए, बेअंत दा रूप हो गए। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरू।
0: परमेश्वर दा रूप हो गए, जमन मरण तो रहत हो गए। श्री सुखनी साहब दे अंदर ए दो अष्टपदियां, साध की महिमा वेद न जाने, ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक सिवन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ए सुखनी साहब दे अंदर गुरु महाराज जी ने साध संगत वर्णन कीता, बड़ी महिमा वर्णन कीती है। आओ ऐसे ही महापुरशां दी पवित्र याद विच बैठे हां, जिन्हां ते ए लफज ए बाणी पूरा ढुकदी है। बोलो सतनाम। वज वज के तिना हिस्सों के बोल के अपनी रसना पवित्र करया करो, अपनी हाजरी लगवाया करो,

0: く自分で。ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, सृष्टि का करता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करते हैं। असी लोग ये सारिया रूहां सारिया आत्मावां परमात्मा तो विछड़िया हुई हैं। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लाख जून दे विच परम दे भटकते फिरते हाँ। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतते फिरदे हां। अनेक तरह के दुखां सुखां दे विच फसे हुए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए हुए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेड़े परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए, और सारे कर्मा बंधना तो रहत हो गए। बोलो
1: सतनाम।
0: उना दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उना दी चरण तोड़ नू खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे हन शिवजी

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हां नूं देवत्यां दे विच सर्वोत्तम मन्ने गए हन। जा रहे हन किसे जंगल दे रस्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करदे हन, मत्था टेक रहे हन, धूल चक चक के मत्थे नाल ला रहे हन, धन धन कर रहे हन, धरती ते नमस्कार करदे हन बारंबार, जिन्हां नूं लोक नमस्कार करदे हन। पार्वती पुछदी है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किस नूं नमस्कार करदे हो, तुसी किस नूं मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी इह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो। भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने तपस्या कीती है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ए धरती दा कण कण पवित्र होया होया है, इस धरती दी ए समर्था है कि पवित्रता बख्श सकदी है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषां दा जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साडे लोगां वास्ते। भावें संसारक तौर ते महापुरुषां दे जीवन नूं कोई सास उस दा कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असीं अपनी बोली दे विच ओह विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरुष जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह होनी जिन्हां ने सात संगत जिन्हां दे नाम तों सारे लोग जानते हैं, भाई वीर सिंह जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां, बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान सात संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह सात संगत संत बाबा नंद सिंह तों उपरंत ते साध संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं साध संगत सुनाउंदे हुंदे हन पटियाले वाले। भाई वीर सिंह जी साध संगत पटियाले आए, संत गुरमुख सिंह उन्हां नूं मिले, जदों भी आउंदे ओह डेरे दे विच होके जांदे, मिलके जांदे। शाम दा वक्त हो गया, भाई वीर सिंह जी ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਸ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ। ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਸ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੱਚੀ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬੋਲੋ
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਨੇ ਮਿੰਟ ਨਮਸਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਈ 25 मिनट मत्था टेकना, नमस्कार कीती, फिर गड्डी तक आए, फिर कहंदे हन भाई वीर सिंह संत गुरमुख सिंह नू कि भाई गुरमुख सिंह जी साडा जी करदा सी इक वारी होर मत्था टेक लिए। बोलो सतनाम, टाइम नहीं है साडे कोल, बड़ी जल्दी जाना है, परंतु जी करदा इक वारी होर ना मत्था टेक लिए। कहंदे महाराज जी मैं आपदी मर्जी है, टेको। भाई वीर सिंह जी फिर मत्था टेकन लगे, नमस्कार करन लगे, इसे तरह 20-25 मिनट का फिर टाइम निकल गया। बोलो सतनाम, संत गुरमुख सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं कदे थानू कोई प्रश्न नहीं किया, कदे सवाल नहीं किया, मेरे मन दे विच कदे कोई शंका आया ही नहीं, परंतु अज मेरे मन दे विच ख्याल आया है, मैं पूछना चाहुंदा हां। भाई वीर सिंह जी कहिंदे पुछो, की पूछना चाहुंदे हो? महाराज नाले दा तुसी कहिंदे साडे कोल टाइम नहीं है, असी बड़ा जल्दी जाना है, जल छकन का भी टाइम नहीं, बैठन का टाइम नहीं, ना तुसी मत्था टेक दे, नमस्कार कर दे। 25 मिनट मत्था टेकिया, 20 मिनट 25 मिनट नमस्कार कीती, दोबारा फिर 20-25 मिनट नमस्कार कीती, नाले कही जांदे हो साडे कोल टाइम नहीं है। बोलो सतनाम, भाई वीर सिंह जी हस पे, कहन लगे भाई गुरमुख सिंह इस धरती ते इतनी तपस्या हुई है, इतना परमेश्वर दा भजन होया है, असी तां अपने आप नूं नमस्कार करके मत्था टेक के चार्ज कर रहे सी। बोलो सतनाम, जिवें बैटरी डाउन हो जांदी है कम करदी करदी, फिर उस नूं चार्ज करन दी लोड पैंदी है। कहिंदे ऐसे तरह असी तां मत्था टेक के असी अपने आप नूं चार्ज कर रहे सी, अपनी उस शक्ति ग्रहण कर रहे सी। सो सास संजिथे वहू दा।

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भगती की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हां दे पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चां दे जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं एसी गुरमुख की कठाली विच ढालिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुओं की संगत करने वाला सी। बोलो
1: सतनाम।
0: साधुओं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी का सी। हुण साध संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्हां नाल बड़ा प्यार करदे सन। गुरु नानक साहिब जाके साधुओं को बैठा करदे, भाई फकीरों को बैठते। सो बाबा जस्सा सिंह जी सास आए साधुओं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते साध संगत भावें घर वाला उसके ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर साध संगत खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी कम काज करदा है उसके कन्न भर दते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा हां, घरवाली तेरी कदे ख्याल रखिया। वह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकदे, पिता जी ने ही सिक्षा दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आउणा है। सो साध संगत परंतु हुण उह कित्थे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरु। जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए। कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह, कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है। जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रशादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता, फिर हुण की हो सकदा है, की करिए हुण, किसे नहर च धक्का दे दिओ। कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए। पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह बोलो सतनाम। अमृत छकिया, पंजां प्यारां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनूं पंजां प्यारे ने नाम दी दात दित्ती है, ते नाले कहा जो तैनूं इह गुरमंत्र दित्ता है, मूल मंत्र दित्ता है, नाम दित्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इहनूं भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डना। इह नाम दी दात गुरू तों जो मिलदी है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे

0: हां बेटा जरूर जपो जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी साह संजू कच्चे कोठे दे विच बैठे 22-23 साल बीत गए बोलो सतनाम श्री वाह। ऐसा सिमरन लतां भी साह संग मंजूर हो गया तुरया नहीं साह संगत इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही बोलो
1: सतनाम श्री वाह।
0: सिमरन देव जिन्हां दी इतनी बंदगी सी इतनी भगती सी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां नूं भी ते साह सुन पिता जी सोचते हैं की करिए बीबी जस्सा ते साह संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: शरण दे विच आए आके बेनती कीती महापुरशो कृपा करो इस बालके नूं अपने चरणी ला लो बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस बालके नूं अपने चरणी ला लो। बाबा हरदित सिंह जी कहंदे हन बालका इह तां बालकी है भाई इह तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालके च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है बोलो सतनाम। दुनिया दी इक निगाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनूं तां कोई परवाह नहीं, तुहानूं दुनिया दी परवाह है। महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तूं तां बई अगों दी होके घेरदा है बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਸ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਾਸ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਣ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਭੇਸ ਧਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਨੋਗੇ? ਹਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीद ना गलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिने त्याग दतिया। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिने लाजा का त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोगों ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इसनू घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उसनू भी कई लोग लानता पाउन लग गए घर वाले नू भी, दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सो सास संगत ऐसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: मुर्दा होए मरीद ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुरपीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सत्संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सास संगत कीड़िया दे पौन ते सुट देंदे सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उसे तरह ही हुक्म दे पए रहिंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सात संग लेल दे विच सात संगत पा के गोले चलाउंदे, सात संग बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे मत्थे दे विच सात संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सात संगत उफण जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरू।
0: देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े घाट घट रहे हैं। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरू। सी ना कहंदे, मेरे गुरु ने, मेरे महापुरुष ने, इस करके सी नी। सात संगत ऐसा जीवन बाबा जस्सा सुना ना सी। बोलो इतना हुक्म,
2: मुर्दा हो जबे मरीद गली हो बना नहीं।

के से बिकते गुरु बाबे फिट के से बिकते गुर अंगद की ते कूड़े गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे गुर चौथ

हमारी जेहबा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपह आणिया हर तुम वड अगम अगा।

हमारी जेबा एक प्रभु जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कवन गुण कहिए तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया कवन गुण कहिए जेबा एक तू समरथ वड़ा मेरी मत थोड़ी राम मेरी मत थोड़ी राम हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तू समरथ वड़ा वड्डी हूं वड्डा।

निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, तेरो थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे, हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को

नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आने हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मे प्रभ हम पापी संग तरा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला हर कृपा।

अचल अविनाशी, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस मृत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कमल रित धारण, गुर अर्जुन गुण सहज विचारण, गुरु रामदास कर क्यों प्रगासा।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच ओहन आख रहे हन जो शायद साडे कदी ख्याल च भी ना दे। गुरु बाबा जी साडे जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां, अपने वल्लों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी दी ऑब्जर्वेशन साडे जीवन दे प्रति ए है कि जीवन की विध ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नू नोट कर लो तो लिख के ते हर वेले सामने रखो ताकि ए सानू रिमाइंड करांदी रहे

बहुत प्यारी गल आ समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ के में पूरे होते हैं, मैनू सुख इस तो के में मिलता है, ये नहीं कि इसनू मैं तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख के में मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटना हां, व्हाट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदिया हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरिया नहीं होंदिया तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आए, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल पर पहुंचते, एक दूसरे को दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने के वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन पर्सनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो पर्सनल नीड्स जब पूरी नहीं होंदिया तो कहते बेशक भावें आवो तो भावें जाओ, जब मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते तो जीना ही नहीं है। महाराज जी असी बड़ी तरक्की की है, तुसी आखदे हो जीना नहीं आता, व्हाट अबाउट ऑल दीज मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, इतनी डिवेलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, तो आखदे हो जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान के रोगों का इलाज कर ली, इतने वड़े वड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत वड़ी चीज नहीं है, कितने कितने भयानक रोग जो हैं उनका इलाज आसानी के नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोज अच्छी तरह हो सकता है, तो तुसी आखदे हो जीना नहीं आ। महाराज जी आखते हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू जीना आ गया। महाराज दसो, एक शिष्य पुछता है सच्चे पातशाह दसो फिर किमें नहीं जीना आ, असि तो सोचते असं बड़ी तरक्की कर गए, असं डॉक्टर बन गए हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सी पैदा कर ली है, तुसी आखते जीना नहीं है। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है, कहते हैं